सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गईयां, जिस विच ए ताकत आ गई, ओ दुनिया तो ही विलक्षण है, ओदी महिमा अपरम

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नू रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं रहना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता। ते संगत दा हुक्म मन के गुरु पंचम पातशाह जी ने यह रिश्ता मोड़ दिता। अज चंदू नू यह वेला हथ आ गया कि समय दी हकूमत ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू गिरफ्तार करके चंदू दे हवाले कर दिता और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत यह है कि हकूमत नहीं सी चाहती सच दी आवाज बुलंद होवे, हकूमत नहीं सी चाहती कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हकूमत करनी बड़ी औखी हो जाती है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे। उस सच दी आवाज नू बंद करना चाहुंदा सी और इस दा इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुल्म करने शुरू कीते, चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता, पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नींह रखण लगिया हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नू मनन दा संदेश

0: देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं। इसे इट्स अप टू अस टुगेदर।
1: आप जपाए जपे सो नाओ। गुरु गोविंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मनन गे? मनन गे जरूर।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदे। जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दर गए मन पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवला वो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मैया आपको कछु न किन्हू लिया।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ए जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

आखण लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बन गए मैं देवांगा। पैसे ले लमी तू किराया ले लमी। पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया, चंगा बई बैठ जा बेड़ी बिच। अज दोनों ही जाने लोई दी ते कबीर दी बेड़ी विच बैठे ने। ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया। ओए मलाह है की करी जांदा है, गरीबड़े आजियां नू मेरे नाल।

लेने ने पांच गुणा ज्यादा मैं तेनू दे देवांगा, इनू थले उतार दे। छोटे लोकां दे नाल बैठण दे नाल शोभा कट जांदी है। ते कबीर

गरीब नू लागे भी बिठा के राजी नहीं, जिन्हां नू तू सुख दिते ने, जिन्हां ते तू रहमतां कीतियां ने, देख उन्हां दा मन किड्डा बिगड़ गया है। गरीब नू लागे भी बिठा के राजी नहीं, ऐ मेरिया रब्बा गरीब होना कोई जुल्म है। रो रो के उस प्रभु नाल गल्लां कर रहे, ऐ मेरे प्रभु जे गरीब होना जुल्म है ते सारिया नू क्यों नहीं अमीर कर देंदा, क्यों नहीं सारिया नू धनवान कर देंदा। सत्संगियो उस प्रभु दी लीला बड़ी न्यारी है, अजे कबीर जी अरदासा ही कर रहे ने, अरजोइया ही कर रहे ने, ते की कौतक बरतिया किनारे दे उपर, जिस पत्थर ते बैठे ने वो पत्थर अपने आप हिलण लग पिया है। लोई देख के हैरान हो, ऐ की होया, पत्थर हिलण लग पिया है। कबीर जी ने लिब जोड़ी हुई है, लोई तक रही है, पत्थर हिल पिया, एहो जिहा हिलिया बेड़ी दे बांग पानी ते तैरन लग पिया। की रहमतां होईयां, तैरदा होया उस सेठ दी बेड़ी नालों भी अगे निकल गया, ते सेठ देख के बड़ा हैरान होया, बई ऐ की गल, कोई तका नहीं ला रहा, कोई चप्पू नहीं मार रहा, ते बड़ी हैरानगी दी गल, पत्थर अपने आप पानी ते तुरिया जा रहा है। सेठ देख के बड़ा हैरान हो रहा है, पत्थर अपने आप पानी ते तुरिया जा रहा है। मलाह नू पुछया भी ये कौन है, मलाह ने आख्या कबीर है। ये कबीर है, इहदी ते अगे भी बड़ी शोभा सुनी है, ये बड़ा सिमरन वाला है, सुनिया है।

के कबीर नू किनारे ते ला दिता। कबीर जी उतर के तुरे ने लोई नू आखिया बलिए एवें छोटी जिनी गल ते रब नू उलांबे देन लग जांदी। लोई नू आख रहे ने एवें घबरा जांदी जे गरीबां दा कोई नहीं ते गरीबां नू रब रब रख लैंदा है। कबीर जी समझा रहे ने पलिए पले धन नाम धन होना चाहिदा है, पले प्रभु दा नाम होना चाहिदा है। गरीबां दी कोई ना बांह पकड़े वो रब पकड़ लैंदा है। एवें ना छोटी जिनी गल ते रब नू उलांबे ना देन लग जाया कर। अज अपनी अखां नाल तक लिया है इन्हें नू सेठ मला बेड़ी चो उतरे ते कबीर दे मगर नसे आ रहे। कबीर जी अगे अगे ते सेठ मला पिछे पिछे दौड़े आ रहे नी ते आ के कबीर दे चरण पकड़ ले। कबीर साढ़े कोलों गुनाह होया है, माया दे हंकार विच तेनू किन्ना मंदा बोल बैठा, तेनू तके मार बैठा, सानू माफ करी। ते गुरु सवारियो जिहड़े सिमरन वाले हुंदे ने ओ अपने मन दे विच किसे लई भी गुस्सा नहीं जे रखदे। कबीर ने आखिया सेठ धन दा माण नहीं जे करीदा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी नानक साहब वाले सोझी देंदे सन गुरसिखा ऐ दुनिया दे सुख पक्के नहीं दे हुंदे, ई उन्हां चिर ही रहिंदे ने जिन्हां चिर तू प्रभु नाल जुड़िया रहेगा। सेठ ऐ सुख पक्के नहीं दे हुंदे, आ दुनिया विच तकिया है लखां पति बंदे कई बार पलां दे विच कखां विच रुल जांदे ने। जिन्हां दे कोल सारे सुख ने आ दुनिया विच देखिया है कई बार पल मात्र दे विच एक एक प्रसादे नू थरस जांदे ने। ऐडा माण नहीं जे करीदा, चंगे होण दा हंकार नहीं जे करीदा। सुख आउंदिआं भी पता नहीं लगदा ते सुख जांदिआं भी पता नहीं जे लगदा। उस मालक कोलों डर के रहीदा है। सेठ दे हाथ जुड़ गए, मेरे कोलों गुनाह होया। कबीर ने आखिया तेरा नाम

Imagina a bacana da gente, né? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? कीर्तन कीर्तन से सुनिया सपना हो जाएगा। करो अरदास, जिन्हें तस्वीर उठती है और पानी जरूर मिले, जिन्हें तस्वीर उठती है और पानी मिले, जिन्हें खोजिए है और माल जरूर है, जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदास मेरा धन गुरु नानक पर है। अब पहले सेवक बनेगा, पीछे प्यार ना सारे बनोगे।

निर्मोल कीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये समूल वस्तु दे ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन नू रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये दिखा है अरुण कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज हूं बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुसी कहते हो वापस अदूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरा मरदाने ने कहा महाराज तुसी थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावे हम थानू कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अदूर कह लगे जी मरदानी असी मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू ना बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे एक सौ रुपये की शैली वापस दिखती सात राजेंद्र होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धरका कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोस लै मठियाई भी रख लै दुध का गड़वा भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के तू जा दे मैं दुकान बंद करके आना हाँ उस दादे के दर्शन करना अगर कम पहुंच गए सर्वा दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नदरी अगर कह दिए झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते हैं इधरों सारे भी आए अदूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारने वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली की है अदूर कह लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनियावी दाता सारी है हीरे कार पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश ही रहे मन नहीं हो मन संतुष्ट नहीं हो मन को संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारस राय मन का भोजन हो रहा है मन ये नहीं रजना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रजना गरीब नवाज फिर करो कृपा अरुण ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अरुण कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर लै महाराज फिर मैं अरुण कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से कह ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होवे तो नहीं पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया बिल्कुल

गुरु अर्जन साहब दे मामा जी, पर नहीं गुरसिखी विच तां नाता प्रेम दा है, गुरु नूं समझण ते गुरु नूं मनण दा है। भाई साहब ने गुरु के वचन नूं समझे, कदे भाई साहब की रचना नूं असीं गुरबाणी की पूंजी भी कह देने, क्योंकि भाई साहब बाणी नूं समझदे ने, बाणी नूं समझाउणा भी जाणदे ने, ते निरा समझण समझाउण की गल नहीं कमाउणा भी जाणदे। अपने जीवन विच भाई साहब ने गुरबाणी नूं कमाया, उन्हां नूं पता है गुरबाणी दे किन्ने वड्डे महत्व ने। कहिंदे ने गुरु का सच्चा वचन, इहदा महत्व शायद संसारियां नूं पता ना लगे, जिवें तली ते पए हीरे दा हर एक नूं पता नहीं हुंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਖ

पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं हुंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौड़ियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौड़ियां तो। कौड़ा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखु हो जहरी कहावै। जहरी कहाए पुन कौड़ा को बनज करे, पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदे, ते कौड़ियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की? भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन कर दें

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया, पर की वेख्या जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया, कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, एक प्रेमी गुरसिख नू पुछया की हाल चाल है, कहंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिया ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नू भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहंदा जिथों नौ निधि मिले असी ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा है, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा स्त्री सौरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं, सत्कार अदब हर धर्म दा करना है। पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है, वह किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नूं मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने

इस चाल हम ते पुन पई शहर पामटा की सुदलई। ए पौंटे दी धरती जो राजा मेदनी प्रकाश दी सी, राजा मेदनी प्रकाश ने सतगुरु नु अपनी मदद ले याद कीता। जब सतगुरु ने आके सहायता कीती ते मेदनी प्रकाश कहन लगा, साहब जी एक याद अपनी तुसी भी इत्थे बनाओ। ते सतगुरु ने जमना दा तट सुंदर वेख के अपना सज्जा चरण कोड़े तो तले लाया, उस धरती दा नाम श्री पौंटा साहिब पै गया। कहिंदे ने सतगुरु इत्थे विराजमान होए।

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरं। कहने नी कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहे हैं, उठी छिच इच्छन कदा मेट जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचों मगध दियां छिटां इंज बार आईयां जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।

आनंद चंदन कियो कोप पारो लगाई बरछी कृपान सवारो। सतगुरु दे दीवान आनंद चंद जी कहिंदे ने कृपाल चंद उदासी वाल आउंदे आ नवाब खां नूं तकिया कि इन्हां नूं मारन लई आ रहा है। कहिंदे ने दीवान ने अगां वध के वार कीता तहां आनंद चंदन कियो को पारो लगाई बरछी कृपान समारो। नवाब खां बच गए, कृपान कढ ले। जद कृपान कढ के जंग करना शुरू कीता साहिब कहिंदे ने टुटी तेग तिखी कड़े जम दंडन। ओ तिखी तेग भी टुट गई, जंग करदियां जद तेग टुट गई कड़े जम दंडन। इन्हां अपनी कटार कढ ले, जद कटार कढी ना कटार कढ के उसके सीने दे विच कोप दिती, उस नूं मैदानी जंग अंदर लिटा दिता। ते सतगुर खुश हुंदे इस नूं वर देंदे, कहिंदे ने कि मैनू इतनी प्रसन्नता होई। टुटी तेग तिखी कड़े जम दंडन, हटी राखियां लज बसन सडढं। साहिब कहिंदे ने इन्हां सोढ़ी अंश दी लाज रख ली नवाब खां नूं मार के। हुण सतगुर कहिंदे ने इस जंग अंदर एक जवान बड़े गुस्से ते क्रोध विच आया, ओ कौन सी? तहां एक बीरंग हरी चंद को पेओ, पाली पात सौ खेत में पारो पेओ। कहिंदे ने हरी चंद आया जिसने पाली पात खेत अंदर अपना पैर टका के ना जंग करना शुरू कीता। महाक्रोध के तीर तीखे प्रहारे, लगे जोन के ताहे पारे पधारे। कहिंदे ने हरी चंद इतने गुस्से दे विच तीर चलांदा है, ओ तीर जिसनू भी लगदा है उसते आर पार हो जांदा है। हरी चंद क्रुदन हने सूर सुदन, पाले बाण बाए बड़े सैन गाए। इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैन किसने मार दिते मैदाने जंग अंदर लटा दिते। क्यों? रसंग रुदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रचिया सी, लोहे दी तरह लाल होया जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र तारी